0: रेडियो आदिपुरा 105.4
1: सुनोस न अहिले हाम्रो गर्नेमा
2: ए समय को साथ में जितू सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़ डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी 15 तर्फ जाने बाटो में कुना को लाइन में
3: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
1: रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस् है।

एस आदि खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सेंजा

0: सुनो सुनो, आइए हम लोग गाड़ी में 8 बजे का छा
1: इस समय को साथ मा जितू सुनचादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़िएको डिपार्टमेंट स्टोर्स को 5 घर अगाड़ी जैसी 15 तर्फ जाने बाटो मा कुनाको लाइन मा
1: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री गर्ने ठाउँ
0: सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् है।

0: ना आइए हम लोग आने में देरी बजे कच्चा
1: इस समय को साथ में जितू सुनचादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे चोड़िए डिपार्टमेंट स्टोर को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में कुना को लाइन में
1: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गर गहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: सुंदर रेडियो आदि खोला 105.4 आपने ख्याल रखना।

एस आधी खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सैंजा।

0: जली यो पीठ को आड़े में संपर्क नंबर 03-6-41-6-96।
1: यो किचन को डेकोरेशन देखे त खाना बनाने मन लगे मलाई त
2: हेर हेर भाड़ा सब फैंक नरिशाउ न तिमी भकुंडे को बाबा फर्नीचर में तिमी खोजे जस्ते किचन डेकोरेशन बनाऊ गई हाल भैया।